हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन।

भजन भी शांति नहीं जप जान बिना संयोग नहीं प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं दया धर्म बिना क्या कर्म नहीं हरि नाम बिना परमात्मा नहीं हरि नाम बिना परमात्मा नहीं